0: Free FM shows are created by people from your community. They represent the host's views and values and are not the views of Free FM. Read more about Free FM and Access Media at freefm.org.nz.
1: The following program is a repeat broadcast of a show originally aired on Free FM. Any date references may no longer apply.
2: कहते हैं कि रात जितनी गहरी होती है, दिल उतना साफ सुनाई देता है। और इसी गहराई में आपका स्वागत है। Good evening, namaste, sat sri akal and salam alaikum. Free FM 89.0 पे आप सुन रहे हैं आपका अपना शो मुसाफिर हूँ यारो, और मैं हूँ आपका मुसाफिर दोस्त जिमी। और आज की ये रात हम दोनों के नाम, सिर्फ आप और मैं, कोई कॉल नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, बस एक धीमी सी रोशनी और एक हल्की सी हवा और ढेर सारी दिल की बातें।

कभी कभी रातें हमें हमारे पुराने हम से मिलाती हैं, जब आते जो दिन में कहीं खो जाती हैं, रात उन्हें धीरे से उठा के हमारे सामने रख देती है। आज की छोटी सी कहानी छत पर बैठा चांद ठीक उसी एहसास के बारे में है। वो छत पे बैठा था, चांद कुछ और भी पास था, हवा में ठंडक थी और दिल में एक कर्म याद। उसने सोचा कि लोग बदल जाते हैं पर कुछ रातें वहीं रहती हैं। और हमेशा यही होता है कि अक्सर हम दिन के शोर में इतने ज्यादा घिरे रहते हैं ना कि अपने दिल की आवाज को सुन ही नहीं पाते, लेकिन रात वो बड़ी अजीब सी दोस्त होती है। धीरे से आती है, कंधे पे हाथ रखती है और कहती है, अब बोलो जो क्या कहना है। मैं नहीं जानता कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन आज की रात एक पल के लिए आपकी सारी थकान सारी दौड़ यही छोड़ दें। चलिए एक गाना बजाते हैं जो रात को थोड़ा सा और नरम कर देगा। स्टे ट्यून्ड।